0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं, विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta yesterday, Mr. Modi said, India follows path of development, not expansionism.
1: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye hum Bharat mein kehte hain, सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
2: Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with his Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. The Prime Minister's office PMO held a high-level review meeting yesterday to review possible impact of El Nino on various sectors and preparedness measures. The meeting was held under the chairmanship of Principal Secretary to Prime Minister Dr. P.K. Mishra at the Seva Tirth. Secretaries and senior officials of more than 15 ministries were present at the meeting.

सुबह की शुरुआत आपके साथ सुन रहे हैं सुहानी सुबह, सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।

सात बजकर छः मिनट हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। 100.1 FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सुहानी सुबह, और आज की सुबह आप सुन रहे हैं आपके रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा को। तो चलिए शुरुआत हो चुकी है आज के इस कार्यक्रम की जिसका नाम है सुहानी सुबह, और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए अपने ट्यून के 100.1 FM गोल्ड के अलावा न्यूज़ ऑन एयर हमारा जो कि ऑफिशियल ऐप है उस ऐप पर हमारे इस प्रसारण को आप सुन पा रहे हैं। और सभी श्रोताओं को भीने भीने मौसम की ढेरों शुभकामनाएं, गुड मॉर्निंग, और एक हल्के फुल्के मज़ेदार मिजाज के साथ आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, सुंदर सा मौसम, भीना भीना मौसम, और इस मौसम के मिजाज के आखिर क्या ही कहने, है ना। जब भी हम नींद से उठकर देखते हैं, जब हम घर के खिड़की पर्दों को हटाकर जब बाहर का नज़ारा लेने की कोशिश करते हैं, तब सबसे पहले हमारे आंखों के सामने क्या आता है। जी हाँ, खूबसूरत नज़ारा, भीना भीना मौसम, पत्तियों के ऊपर बरसात के छींटे पड़े हुए हैं, इसके अलावा जो रास्ते हैं वो भीगे, और हर एक चीज़ पर बरसात की

छुअन हो चुकी है और उसी के साथ हमारा जो मन होता है ना, जी हाँ, हमारा कोमल सा सुंदर सा मन, वो भी इस नज़ारे को देखकर बिल्कुल खुश हो जाता है। तो चलिए खुशमिजाज मौसम का मजा आप लेते रहिए, साथ ही साथ कुछ दिल छूने वाली अगर गीत संगीत आप तक पहुंचे, इसके अलावा कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी जानकारी जिसके बारे में आप जानकर सुनकर कुछ जान पाए, जी हाँ, कुछ सीख पाए, तो चलिए ऐसी बहुत सी बातें होंगी आज के इसी कार्यक्रम में। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, कार्यक्रम का साथ रहेगा पूरे 8 बजे तक का।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सुबह की शुरुआत आपके साथ, सुन रहे हैं सुहानी सुबह, सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।

7:01 है स्टूडियो की घड़ी का समय। संग आप शर्मिशा के सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सुहानी सुबह। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 100.1 FM गोल्ड के अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। तो मौसम अगर सुहाना हो, मौसम अगर भीगा भीगा हो और मौसम अगर ऐसा हो जिसे देखते ही एक नज़र में देखते ही दिल जो है वो दीवाना हो जाए, तो ऐसे मौसम के साथ दिल का लगाव, दिल का झूमना तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है ना। लेकिन यही दिल फिर एक बार परेशान भी हो सकता है और वजह वही मौसम। जी हाँ, इसी सुहाने खूबसूरत भीगे भीगे मौसम के ज़रिए आपका दिल जो है वो परेशान दुखी भी हो सकता है। और ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो बरसात का मौसम है, ये जो भीगा भीगा मौसम, ये जो खूबसूरत मौसम है, ये अपनी खूबसूरती के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी अपने साथ लेकर आता है जिसका स्वागत हम बिल्कुल भी करना

नहीं चाहते, यानी कि बात कर रहे हैं कुछ ऐसे शारीरिक परेशानियों के बारे में जिससे हम में से ज़्यादातर लोगों को जूझना पड़ता है और परेशान भी हम काफ़ी हो जाते हैं। बात कर रही हूँ एलर्जी के बारे में। वैसे तो पूरे साल कई चीज़ों से लोगों को एलर्जी की परेशानियाँ रहती हैं, लेकिन मौसम है बरसात का, तो फिलहाल बरसात के मौसम से जुड़े एलर्जी की अगर बात करें तो खूबसूरत मौसम है, भीगा भीगा मौसम है और इस भीगे भीगे मौसम का जो मज़ा है उसे हम खूब लेना चाहते हैं, लेते भी हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ऐसी अनचाही एलर्जी की समस्याएं भी साथ में आ जाती हैं जिसका स्वागत हम बिल्कुल भी नहीं करते या फिर करना नहीं चाहते। लेकिन इसके बावजूद अगर हमने मौसम का मज़ा ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया और मौसम का मज़ा लेते हुए अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो एलर्जी की समस्या भी कई सारी लोगों को परेशान कर देती है। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मौसम के मिजाज के बारे में आप सभी तक जानकारी पहुंचाऊं कि आज के दिन मौसम का मिजाज आखिर कैसा रहने वाला है और अलीपुर मौसम विभाग की ओर से आखिर आज के मौसम को लेकर क्या अपडेट दी जा रही है। तो कहा तो यही जा रहा है कि आसमान में बादल छाए रहेंगे और कभी कभार हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना दी जा रही है। इसके अलावा अगले 24 घंटों के लिए अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान आखिर कितना रहने वाला है, चलिए इसके बारे में भी बताऊं। 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के तौर पर रहने की संभावना है। इसके अलावा 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रह सकता है। तो चलिए पिछले 24 घंटों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान आखिर कितना रिकॉर्ड किया गया इसके बारे में भी बताऊं। अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया 30.2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सामान्य से 2.3 डिग्री कम, और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 27.4 डिग्री सेल्सियस यानी कि 0.6 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया था। अधिकतम आर्द्रता रिकॉर्ड किया गया था 93% और न्यूनतम आर्द्रता को रिकॉर्ड किया गया था 81%। पिछले 24 घंटों में बरसात बिल्कुल भी नहीं हुई और अच्छी बात यह है कि आज के लिए या फिर आने वाले समय के लिए मछुआरे भाइयों के लिए कोई सतर्क वार्ता जारी नहीं की गई है। तो ये तो थी अलीपुर मौसम विभाग की ओर से दी जाने वाली जानकारी मौसम से जुड़ी हुई। और भाई भीना भीना मौसम है, खूबसूरत मौसम है और खूबसूरत मौसम को खूबसूरत तरीके से आप एंजॉय करते रहिए, मज़ा उठाते रहिए, लेकिन साथ ही साथ सावधान रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि वही बात, जी हाँ वही वाली बात, अगर आप सावधान नहीं रहते हैं तो एलर्जी की समस्या से जूझना पड़ सकता है। और इस विषय को लेकर भी मैं करूँगी बात, क्योंकि आज के दिन को लेकर तो आखिर करनी ही बात है ना, और आज का दिन आखिर जुड़ा हुआ है कुछ ऐसे ही विषय से। इसके अलावा आज के हैप्पी वाली बर्थडे को लेकर भी बात करूंगी। इसके अलावा इतिहास का क्या, जी हाँ उसकी चर्चा भी होगी इसी कार्यक्रम में, इसीलिए आपने जुड़े रहना है इस कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है सुहानी सुबह। आप इस वक्त सुन रहे हैं आपकी रिटी दोस्त शर्मिशा को।

जिस तरह शाम का हो गुमा सुबह पे, जिस तरह शाम का हो गुमा जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

7:32 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में संग है आप शर्मिशा के सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सुहानी सुबह जिसे आप सुनते हैं हर रोज इसी जगह इसी चैनल पर। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को। और जैसे कि मैं बता रही थी कि खूबसूरत मौसम है, भीगा भीगा मौसम है और मौसम खूबसूरत भले ही हो लेकिन कभी कभार हमारी अपनी गलती की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़ता है और इस परेशानी का कारण बस यही है, वो है एलर्जी। जी हाँ, और इसी के साथ बात कर रही थी आज के खास दिन को लेकर। वैसे तो दो अलग अलग कारणों से आज के दिन को मनाया जाता है। जी हाँ, दो अलग अलग नाम दिए गए हैं आज के दिन को मनाने के लिए। लेकिन सबसे पहले जैसे कि मैं बात कर रही थी परेशानी की, तो चलिए उसी के बारे में बात करूं जो कि जुड़ा हुआ है आज के दिन के साथ भी। तो आज का दिन वैसे तो मनाया जाता है वर्ल्ड एलर्जी डे के तौर पर। और जी हाँ, मौसम भीगा भीगा है और भीगे भीगे मौसम के साथ चली आती हैं बहुत सी ऐसी परेशानियाँ जो कि हमारे नाक में ना दम करके छोड़ती हैं। जी हाँ, वर्ल्ड एलर्जी डे के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है। वैसे तो लोगों को कई तरह की एलर्जी की समस्या होती है और पूरे साल में लोग अलग अलग तरह की एलर्जी की परेशानी से परेशान होते रहते हैं। जी हाँ, कभी कभार मौसम का बदलना भी एलर्जी के रूप में हमें परेशान करके छोड़ता है। तो कभी कभार खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनमें भी कई सारे लोगों को अलग अलग तरह की एलर्जी की परेशानियाँ होती रहती हैं। लेकिन फ़िलहाल बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में भी कई सारे लोग अलग अलग तरह की एलर्जी की परेशानी से परेशान हो रहे हैं। जी हाँ, बरसात का मौसम है, थोड़ा सा भीग लिया या फिर ये जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं, भीगी भीगी हवा है, इसकी वजह से भी कई तरह की एलर्जी का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो चलिए बताऊं आपको आज के खास दिन को लेकर। वर्ल्ड एलर्जी डे अर्थात विश्व एलर्जी दिवस के तौर पर मनाया जाता है आज के दिन को। और इसे मनाने के पीछे का कारण यही है कि एलर्जी जो है एक गंभीर समस्या है और ठीक तरीके से इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। इसी जानकारी को लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है और इसी जानकारी को पहुंचाने के लिए आज के इस खास दिन को मनाया जाता है। वर्ल्ड एलर्जी डे हर साल दुनिया भर में एलर्जी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और अस्थमा और अन्य एलर्जी संबंधी बीमारियों से बचाव के लिए मनाया जाता है। इसे मुख्य रूप से विश्व एलर्जी संगठन द्वारा शुरू किया गया था। और इस दिन को मनाने के पीछे के इतिहास के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो शुरुआत हुई थी इस दिन को मनाने की साल 2005 में। जी हाँ, विश्व एलर्जी संगठन द्वारा पहली बार विश्व एलर्जी दिवस जुलाई 2005 में मनाया गया था। और सप्ताह के शुरुआत की अगर मैं बात करूँ तो 2011 में इस आयोजन के दायरे को बढ़ाते हुए इसे सप्ताह भर के कार्यक्रम में बदल दिया गया था। और मनाने का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि एलर्जी एक गंभीर समस्या के तौर पर हमारे सामने आती है और इस गंभीर समस्या का समाधान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही मैसेज लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है और इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। तो एलर्जी के सामान्य कारण की मैं बात कर रही थी तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की चीज़ों से एलर्जी होती है। किसी को मौसम के बदलाव से एलर्जी होती है तो किसी को अलग अलग तरह के जो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों से भी एलर्जी होती है। तो करना क्या है भाई, सीधा सा सिंपल सा काम है कि जिन चीज़ों से आपको एलर्जी होती है उससे आपको आप थोड़ा सा दूर रहें, दूरी बनाए रखें। जैसे कि अगर किसी खाने पीने की चीज़ से आपको एलर्जी होती है, अगर आपको पता है कि उन चीज़ों से आपको एलर्जी होती है तो उन चीज़ों का सेवन आपने कम से कम करना चाहिए या फिर आप बिल्कुल ही अगर ना करें तो ये आपके सेहत के लिए बेहतर रहता है। इसके अलावा अगर मौसम के बदलाव से आपको एलर्जी होती है तो जब भी मौसम बदलता है तो उससे पहले सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है, एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बताया जा रहा है। तो चलिए, एलर्जी को लेकर तो होगी बहुत सारी बातें क्योंकि आज का दिन डेडिकेटेड है वर्ल्ड एलर्जी डे के नाम पर। और
साथ ही साथ भीगे भीगे मौसम का मज़ा आखिर हम क्यों ना ले। जी हाँ, एलर्जी चाहे जितनी भी हो जाए लेकिन कई बार मन जो है वो बिल्कुल भी नहीं मानता है ना, और मन को आखिर मनाए भी कैसे, क्योंकि ये जो मौसम है ये तो साल में बस एक ही बार आता है ना। वैसे तो हर मौसम साल में एक ही बार आता है और उसके बाद जब चला जाता है ये मौसम तो ऐसा लगता है ना कि मौसम तो चला गया, लेकिन इस परेशानी की वजह से, इस एलर्जी की वजह से हम मौसम का भरपूर मज़ा नहीं उठा पाए। तो बिल्कुल सतर्क रहिए, सावधान रहिए। एलर्जी की परेशानी के बारे में अगर आप अवगत हैं, किन चीज़ों से आपको एलर्जी होती है, तो उन चीज़ों से आप अपने आप को बचाते हुए मौसम का मज़ा बिल्कुल उठा ही सकते हैं। तो चलिए, मौसम का मज़ा आप उठाते रहिए, साथ ही साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी सुबह, जिसमें हर तरह की बातें होती हैं और साथ ही साथ खूबसूरत नगमों को भी आप सुन पाते हैं। तो फिलहाल सुनवाऊं आपको एक प्यारा सा गीत जिसमें आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

भीगे भीगे मौसम का मजा आप उठाते रहिए। और यहाँ मैं बात करूँ अगले विषय को लेकर। जी हाँ, तो जैसे कि मैं बता रही थी कि आज का दिन डेडिकेटेड है दो अलग अलग विषयों को लेकर, यानी कि वर्ल्ड एलर्जी की डे के तौर पर तो आज के दिन को मनाया ही जाता है, लेकिन इसी के साथ उन लोगों के नाम आज के दिन को किया गया है जो सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले लोगों की रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही फ़ोन कॉल गया, जैसे ही मैसेज गया, जैसे ही जानकारी उन तक पहुंची कि लोगों को हमारी ज़रूरत है, ठीक उसी क्षण पहुंचने की इन लोगों की जो कोशिश है, इस कोशिश को, इस साहस को शाबाशी देने के लिए, याद करने के लिए आज के दिन को मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल पैरामेडिक्स डे के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है। जी हाँ, आज ही का दिन डेडिकेटेड है उन लोगों के नाम जो बिना सोचे समझे, बिना वक्त गवाए, जैसे ही मैसेज पहुंचा, जैसे ही संदेश उन तक पहुंचा, जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचने की कोशिश, जल्द से जल्द लोगों को इमरजेंसी सेवा देने की उनकी जो कोशिश है, इस कोशिश को सलाम करने का दिन है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय पैरामेडिक्स दिवस हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है। ये दिन पैरामेडिक्स के समर्पण, नवाचार और जीवन रक्षक कार्यों का सम्मान करने और उनके योगदान को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। उद्देश्य सिर्फ यही कि आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, जैसे कि इमरजेंसी में पैरामेडिक्स की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वे किसी दुर्घटना या फिर बीमारी के स्थान पर सबसे पहले पहुंचकर लोगों की जान बचाने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। और अगर थीम की बात करें तो हर साल एक अलग थीम के साथ इस दिन को मनाया जाता है, और इस साल यानी कि 2026 में इनोवेट एंड इंटीग्रेट ये थीम रखा गया है। और पैरामेडिक्स आखिर कौन होते हैं, कौन लोग हैं वो जिनके नाम आज के दिन को किया गया है? पैरामेडिक्स ट्रेंड स्वास्थ्य सेवा पेशेवर होते हैं जो एम्बुलेंस में तैनात रहकर आपातकालीन चिकित्सा जो प्रोसेस है उसे प्रदान करते हैं। इनका कार्य क्षेत्र केवल एम्बुलेंस तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि स्कूलों, सेना, अस्पतालों और टेलीफोन ट्राइज सिस्टम में भी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। वे अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज को प्राथमिक उपचार, जो फर्स्ट एड होता है, और उन्नत चिकित्सा देखभाल प्रदान उनके द्वारा किया जाता है। तो उन्हीं के नाम, उनके साहस को, उनके कार्य को सलाम करते हुए आज के दिन को डेडिकेट किया गया है, जिसे नाम दिया गया है इंटरनेशनल पैरामेडिक्स डे। इसके अलावा बात करूंगी आज के खास जन्मदिन को लेकर। इसके अलावा इतिहास के पन्नों को भी थोड़ा सा उल्टा जाएगा। कार्यक्रम चल रहा है सुहानी सुबह, और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 100.1 FM गोल्ड। के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं।

खूबसूरत तराने के बाद अब बात कर लेते हैं हैप्पी वाले बर्थडे को लेकर, और बताऊं आपको कि आज के दिन बॉलीवुड की दुनिया में आखिर कौन मनाते हैं अपना हैप्पी वाला बर्थडे। तो जानी मानी खूबसूरत बोल्ड अभिनेत्री नीतू सिंह का आज जन्मदिन वे मनाती हैं। नीतू सिंह जानी मानी अभिनेत्री हैं बॉलीवुड की, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी कि 8 जुलाई 1958 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और 70 के दशक की शीर्ष अभिनेत्री बनी उसके बाद। बतौर बाल कलाकार उनकी पहली फिल्म 1966 में आई सूरज थी, जिसमें उनके काम को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इसके अलावा उन्होंने दो कलियां, 10 लाख और वारिस जैसी अनगिनत फिल्मों में अपने खूबसूरत अभिनय के जरिए हजारों लाखों लोगों को अपने अभिनय का दीवाना बनाया था। उसके बाद शादी के बंधन में ऋषि कपूर के साथ बंधने के बाद उन्होंने कई सालों तक फिल्मी दुनिया से दूरी बनाए रखी और उसके बाद फिर से उन्होंने वापसी की थी। जी हाँ, साल 2009 में फिर से उन्हें देखा गया था 26 साल के बाद। लव आजकल के अलावा और भी बहुत सी फिल्में हैं जिसमें उन्हें दोबारा अभिनय करते देखा गया था। तो चलिए इस खूबसूरत अभिनेत्री को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और

आज के दिन के इतिहास को लेकर चलिए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो 170 सदस्यीय दल के साथ समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने के लिए वास्को डी गामा यूरोप से 1497 में रवाना हुए थे। और इसके अलावा 1833 की अगर मैं बात करूं तो रूस और तुर्की ने 1833 में सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1948 की अगर बात करें तो अमेरिकी वायुसेना में 1948 को महिलाओं की भर्ती शुरू हुई थी। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर 2005 में समूह 8 के देशों में सहमति बन चुकी थी। इसके अलावा 1933 की अगर बात करें तो हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, सशक्त कथाकार, नाटककार और आलोचक गिरिराज किशोर का जन्म आज ही के दिन 1933 में हुआ था। इसके अलावा 1958 की अगर बात की जाए तो हिंदी चलचित्र अभिनेत्री काला पत्थर या फिर दीवार की अभिनेत्री नीतू सिंह का जन्म आज ही के दिन हुआ था, जिसके बारे में मैं बस अभी अभी जिक्र कर रही थी। तो ये तो थी कुछ घटनाएं जो कि घटी थी और दर्ज होकर रह गई इतिहास के पन्नों में, जिनका जिक्र आज फिर से हम कर रहे हैं। तो इसी के साथ समाप्त करना चाहूँगी आज के इस कार्यक्रम को, जिसे आप रोज़ाना इसी वक्त इसी जगह सुनते हैं, जिसका नाम है सुहानी सुबह। लेकिन जाने से पहले छोड़े जाना चाहूँगी एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए, जिसमें आवाज़ होगी किशोर कुमार और आशा भोंसले की। इस गीत को सुनते सुनते शर्मिशा को दीजिए इजाज़त। फिलहाल के लिए आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगी। आप दोबारा इसी जगह आप मुझे फिर से सुन पाएंगे, समय रहेगा 11:10 लेकर आऊँगी कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। तब तक के लिए ट्यून रहेगा 100.1 FM गोल्ड के साथ। सुन रहे थे कार्यक्रम सुहानी सुबह।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
3: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और सख्त उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग पर समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047

0: विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। संदीप अंदाज गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत पहली जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और इसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमेरिका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
4: अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमेरिका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों सिक्किम महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक पूर्वी राजस्थान गुजरात कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही पर एक

0: दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार। गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी। 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, the two leaders urged action against globally proscribed terrorist and terrorist organizations, including those designated under the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. We have more from a correspondent.
3: The two leaders agreed to deepen cooperation in preventing and countering terrorism and violent extremism conducive to terrorism. The cooperation will include measures to curb terror financing, strengthen implementation of internationally agreed anti-money laundering, and countering the financing of terrorism standards, prevents the misuse of emerging technologies by terrorist groups, and tackle online radicalization and recruitment through digital platforms. Reaffirming a zero-tolerance approach to terrorism, the two sides pledged to continue disrupting terror financing networks and enhance bilateral and multilateral cooperation, including through the United Nations and the Financial Action Task Force FATF. Recognizing the links between terrorism and transnational organized crime, India and Indonesia agreed to strengthen information sharing and exchange of best practices in line with their domestic laws and international obligations. They also welcomed the early conclusion of Memorandum of Understanding on Counter-Terrorism Cooperation, which is expected to be signed soon. The two countries welcome the planned third India-Indonesia security dialogue as a platform to expand cooperation in counter-terrorism, transnational crime, cyber-security, emerging technologies, defense industry, maritime security and space. Both leaders also agreed to explore

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबायो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।
1: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों में छापेमारी की। छापेमारी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों

0: तथा एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों की गई मामले की जांच जारी है। अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जल डमरू मध्य में तीन व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि होर्मुज में ईरान द्वारा निर्दोष नागरिकों द्वारा संचालित वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका के ये हमले समझौते का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्विट्जरलैंड कोलंबिया को हराकर 1954 के बाद पहली बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। वहीं राउंड ऑफ 16 के अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, the two leaders urged action against globally proscribed terrorists and terrorist organizations, including those designated under the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. Prime Minister Narendra Modi has become the first Indian Prime Minister to address the Parliament of Indonesia. Addressing Indonesian lawmakers in Jakarta, Mr. Modi called for a new era in bilateral relations anchored in shared civilizational heritage, democratic values, and a common vision for the future. Describing India as the mother of democracy, the Prime Minister said, New Delhi is committed to strengthening democratic linkages with Indonesia.
2: भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और इंडोनेशिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत में सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं, तो इंडोनेशिया में भी सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं। भारत में वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है, तो इंडोनेशिया में भिन्ने का तुंगल इक्का का विचार है।
1: Prime Minister Modi will visit the iconic Prambanan Temple in Yogyakarta along with Indonesian President today. The visit underscores the deep cultural and civilizational ties that have connected India and Indonesia for over 1,000 years. Built in the 9th century, Prambanan is Indonesia's largest Hindu temple complex and one of Southeast Asia's finest architectural masterpieces. In the second leg of his three-nation tour, Prime Minister Modi will reach Melbourne today on a three-day visit where he will participate in the third India-Australia annual summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. Mr. Modi will also participate in the India-Australia CEOs Forum where he will address a gathering of top business leaders from both the countries. The Prime Minister's office held a high-level review meeting to review possible impact of El Nino on various sectors and preparedness measures. The meeting was held under the chairmanship of Principal Secretary to Prime Minister Dr. P.K. Mishra at Seva Tirth yesterday. Secretaries and senior officials of more than 15 ministries were present at the meeting. Mr. Mishra directed that the overall situation should be continuously monitored and the impact of the monsoon or delayed monsoon on vulnerable districts must be assessed in coordination with states so that remedial action can be taken up when necessary. The Enforcement Directorate (ED) conducted searches at five premises in and around Kolkata in connection with alleged dishonest financial dealings, unlawful collection of money and routing of suspected funds through certain bank accounts of the All India Trinamool Congress. The searches are being carried out at premises linked to the private firm Carewell Group of Companies operating in the aviation sector, its directors and one purported electoral trust. The India Meteorological Department IMD informed that conditions are favorable for southwest monsoon to further advance into the remaining parts of North Arabian Sea, Rajasthan, Haryana and Punjab during next 2 to 3 days. The Met Department forecast very heavy rainfall today over sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Maharashtra, coastal Karnataka, East Rajasthan, Gujarat, Konkan and Goa and South Interior Karnataka. The US military has launched new strikes against Iran hours after three merchant ships were struck in the Strait of Hormuz. In a statement, US Central Command said that American forces have launched strikes to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. In football, Switzerland beat Colombia 4-3 in a penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. In another round of 16 match, Argentina defeated Egypt 3-2 in Atlanta. With this win, Argentina entered the quarterfinals of the tournament. In men's cricket, England defeated India by 125 runs in the third T20 international at Trent Bridge in Nottingham last night. And that is the end of this news bulletin.
3: কথায় গোল্ডেন সময় আপনি শুনছেন 100.1 FM Gold 100.1 FM Gold FM Gold
4: ফিরবো বললে ফেরা যায় নাকি ফেরা যায় কি যায় না সেটা আমরা জানি না কিন্তু আমরা সবাই ফিরতে চাই পুরনো বাড়ি পুরনো স্কুল পুরনো বন্ধু ফেলে আসা গ্রাম বা শহরে এমনকি কখনো নিজের কাছেও আমরা এগিয়ে যাই কাজের উন্নতিতে কিন্তু সেই জায়গা যেখানে আমরা কাজ শিখেছিলাম আনন্দে সেখানে অন্তত একবার আমরা ফিরতে চাই নিজের যে সত্তাকে কখনো হারিয়েছি সেখানেও ফিরতে চাই আর সেই ইচ্ছা নিয়ে অনুগল্প লিখুন অনধিক 70টি শব্দের মধ্যে আর পাঠিয়ে দিন 9903055992 এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করে চিঠির মাধ্যমে গল্প পাঠাতে চাইলে ঠিকানা অনুগল্পের আসর FM গোল্ড প্রযত্নে কেন্দ্র অধিকর্তা আকাশবাণী ভবন কলকাতা 700001 ইমেল করতে পারেন airfmgoldkolkata@gmail.com জুলাই মাসের গল্প লেখার বিষয় শিকড়ে ফেরা গল্প পাঠানোর শেষ তারিখ 21 জুলাই শুনুন অনুগল্পের আসর মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শুক্রবার রাত 9:30 100.1 FM গোল্ডে
5: মন কাড়া কথা আর মন মাতানো গান শুনছেন মনের মেলোডি 100.1 FM গোল্ডে মনের মেলোডি মনের মেলোডি

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबायो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।
1: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अलनीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धैर्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये देश को सबसे कठिन चुनौतियों के बीच भी एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। संस्कृत का एक प्रेरक कथन साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि धैर्य किसी राष्ट्र को निरंतर प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और अर्जेंटीना तथा स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और असर उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग पर समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। संदीप दास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज

0: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता के प्रम्बानन मंदिर जाएंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
0: हमारी संवाददाता ने बताया है कि न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की अनूठी छटा देखने को मिलती है।
2: पिछले 26 वर्षों से भारतीय देवी देवताओं की प्रतिमाओं, पूजा सामग्री, रंग बिरंगे भारतीय परिधानों और पारंपरिक वस्तुओं के माध्यम से स्थानीय लोगों को भारतीय संस्कृति से परिचित करा रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में स्टोर की संचालिका किम होलवाइट ने बताया कि बड़ी संख्या में न्यूजीलैंड के लोग हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ साथ भारतीय परिधानों और आध्यात्मिक परंपराओं में भी गहरी रुचि दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का शांति, प्रेम और सकारात्मकता का संदेश लोगों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। ऑकलैंड से मंजू मीणा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए।
3: अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमेरिका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास लक्ष्य हासिल करने की समय सीमा में अब केवल 4 वर्ष शेष हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के
4: विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2015 में 2030 सतत विकास कार्य योजना को अपनाने के बाद निवेश, बेहतर नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने विश्व भर में अरबों लोगों के जीवन में सुधार हुआ है। लगभग 100 करोड़ लोगों को सुरक्षित पेयजल और 120 करोड़ लोगों को सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता की सुविधा मिली है। रिपोर्ट के अनुसार 2015 और 2024 के बीच नए HIV संक्रमणों में 30% की कमी आई है और
0: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की।

अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rainwater harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुब्यांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।
1: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रांबानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रांबानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। भारत और इंडोनेशिया ने प्रांबानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अलनीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों में छापेमारी की। छापेमारी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। मामले की जांच जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत की मानवीय सहायता को स्वीकार करने के लिए वेनेजुएला का धन्यवाद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जायसवाल ने कहा कि ये राहत अभियान दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता को दर्शाता है। भारत ने विनाशकारी दोहरे भूकंपों के बाद वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। केरला में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिलों में येलो अलर्ट जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धैर्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये देश को सबसे कठिन चुनौतियों के बीच भी एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। संस्कृत का एक प्रेरक कथन साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि धैर्य किसी राष्ट्र को निरंतर प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

बॉलीवुड ने हर दशक में एक से बढ़कर एक दिग्गज अभिनेत्रियां पाई हैं, जिन्होंने अपनी शानदार अभिनय, बेमिसाल खूबसूरती और लाजवाब डांस मूव से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ऊंचाइयों तक पहुंचाने और लाखों दर्शकों के दिलों पर राज करने में अहम भूमिका निभाई है। आज बात करूंगी किसी खास को लेकर। जी हाँ, एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपना नाम बॉलीवुड की दुनिया में बहुत

0: बहुत दूर तक फैलाया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हजारों लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी थी ये अभिनेत्री। 100.1 FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है लो आ गई उनकी याद। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हमारे प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। संग है आप, साथ है आप अपने रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा के और लेकर आ चुकी है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है लो आ गई उनकी याद। और आज के इस कार्यक्रम में बात करूंगी किसी खास को लेकर। जी हाँ, एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में आज बात होगी जो मना रही है बॉलीवुड की दुनिया में अपना हैप्पी वाला बर्थडे। तो चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज़ में। सुन रहे थे इस बहुत ही प्यारे से गीत को फिल्म अदालत से राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और मदन मोहन का संगीत था इस गीत में। और बताऊं आपको कि इस गीत में जिन अभिनेत्री के बारे में मैं बात करने वाली हूं उन अभिनेत्री को बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन के साथ इस फिल्म में इस गीत में देखा गया था। तो चलिए बातें आगे बढ़ाते हैं और फिलहाल एक गीत की ओर रुख करते हैं और गीत को सुनने के बाद बताऊँगी आपको कि आज आखिर किन के बारे में मैं बात करूँगी, किन के बारे में चर्चा करूँगी, आखिर बॉलीवुड की दुनिया में कौन है जो मना रही हैं आज अपना हैप्पी वाला बर्थडे। तो चलिए अब सुनवाते हैं आपको किशोर कुमार आशा भोंसले की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा तराना।
1: हाँ? या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है

बीते हुए पल लेके आए हैं यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

प्यार कर लिया तो क्या, प्यार कोई खता नहीं, यही कहते कहते हमारी आज की अभिनेत्री ने बांधी थी अपने जीवन की डोरी अपने प्रेमी संग, यानी कि ऋषि कपूर के साथ उन्होंने बांधी थी अपनी प्यार की डोरी। जी हाँ, शादी के बंधन में बंधने के बाद सालों तक उन्होंने बॉलीवुड की दुनिया से दूरी बनाई और उसके बाद बेशक उन्होंने वापसी भी की और फिर से उन्होंने अपने अभिनय के जलवे को दर्शकों तक पहुंचा दिया। बात कर रही हूं कोई और नहीं बल्कि बोल्ड एंड ब्यूटीफुल अभिनेत्री नीतू सिंह के बारे में। मनाती हैं आज अपना हैप्पी वाला बर्थडे।

औरतें बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी हुई हैं और जाने माने फिल्मों के जरिए हजारों लाखों दर्शकों को अपना दीवाना बना चुकी हैं, अपने अभिनय का, अपने डांस का और अपनी खूबसूरती का तो दीवाना वे बना ही चुकी हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बातें हो रही हैं अभिनेत्री नीतू सिंह को लेकर, और बातें होंगी उनकी फिल्मों को लेकर, उनकी फिल्मों के गानों को लेकर और उनके अलग अलग किरदारों को लेकर भी। फिलहाल रुख करते हैं एक बहुत ही प्यारे से गीत की ओर। फिलहाल किशोर कुमार आशा भोंसले की आवाज़ में ये गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। FM

11:31 है स्टूडियो की घड़ी का समय। संज्ञा अक्षर मिश्रा के सुन रहे हैं कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। और इस कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले मौसम विभाग की ओर से दी जा रही मौसम की चेतावनी आप सभी श्रोताओं तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाना चाहूंगी। और मौसम विभाग की ओर से ये कहा जा रहा है कि अलीपुरद्वार, कूचबिहार, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी जिलों में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना दी जा रही है। इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बिजली चमकने की आशंका भी जताई जा रही है। तूफान के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। फिलहाल मौसम से जुड़ी चेतावनी यहीं तक। फिर एक बार रुख करते हैं फिल्मी गीत की ओर। कार्यक्रम चल रहा है लो आ गई उनकी याद। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस अभिनेत्री नीतू सिंह को लेकर।

नीतू सिंह के बेहतरीन अभिनय को हमने अलग अलग फिल्मों के माध्यम से देखा था, जैसे कि दीवार, अदालत, रिक्शा वाला, खेल खेल में, प्रिय तमा हो गया या फिर हवस जैसी अनगिनत फिल्मों के जरिए नीतू सिंह के बेहतरीन अभिनय को हमने देखा है। लेकिन उनके फिल्मी करियर की अगर बात करें तो शुरुआत उन्होंने की थी बेबी सोनिया के नाम पर। जी हाँ, बेबी सोनिया के तौर पर उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। जी हाँ, और दो कलियां फिल्म का नाम था जिसमें उन्होंने बेबी सोनिया का अभिनय किया था, और एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने इस सफ़र की शुरुआत की थी। और शुरुआत से ही उनका नाम चारों तरफ फैल गया, क्योंकि उनका जो अभिनय था इतना ही अव्वल था, इतना ही खूबसूरत था कि पहली नज़र में ही लोगों ने उनके अभिनय को भांप लिया था, उनके अभिनय को पसंद करना शुरू कर लिया था। तो इस तरीके से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जी हाँ, एक से बढ़कर एक अनगिनत फिल्मों को वे साइन करती चली गई और अनगिनत अभिनेताओं के साथ उनकी जो बॉन्डिंग थी वो बहुत ही खूबसूरत बनी। हाँ, ये अलग बात है कि ऑन स्क्रीन की बात करें या फिर ऑफ स्क्रीन की बात करें, ऋषि कपूर और नीतू सिंह की जो बॉन्डिंग रही है उसकी दाद लोग आज भी देते हैं। जी हाँ, तारीफें करते नहीं थकते इस जोड़ी की। लेकिन इसके बावजूद नीतू सिंह की जोड़ी और भी अभिनेताओं के साथ बेहतरीन रही अलग अलग फिल्मों के माध्यम से। तो चलिए सुनवाऊँ आपको एक प्यारा सा गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, दो कलियां फिल्म से, जिसमें नीतू सिंह के चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर सबसे पहले उन्होंने परफॉर्म किया था।

बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

11:47 है। स्टूडियो घड़ी का समय संख्या आप शर्मिशा के सुन रहे हैं कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री नीतू सिंह को लेकर। नीतू सिंह ने अपने पूरे करियर में लगभग 80 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और इतने सारे फिल्मों में उन्होंने सिल्वर स्क्रीन को शेयर किया अपने लाइफ पार्टनर के साथ, यानी कि ऋषि कपूर के साथ, जिसमें खेल खेल में, रफू चक्कर, कभी कभी, अमर अकबर, एंथनी, दूसरा आदमी, दुनिया मेरी जेब में जैसी फिल्में शामिल हैं।

मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले और साथियों की आवाज़ में सुन रहे हैं आप कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत। और इसी के साथ लो आ गई उनकी याद, कार्यक्रम को करना होगा यहीं पर समाप्त, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं लगभग 12 बजे का समय होने को है और इस कार्यक्रम को समाप्त करने का समय भी हो चला है। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहती है आपकी रेडियो दोस्त शर्मिशा। मिल रही हूँ, बहुत जल्द समय रहेगा ठीक 12 बजे का, लेकर आऊँगी दैनिक हिंदी पत्रिका का कार्यक्रम सुरभि। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए अपनी ट्यून करना है आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। तब तक के लिए ट्यून रहेगा 100.1 FM गोल्ड के साथ। सुन रहे थे कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद।

0: के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार पूरी योजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव भी बरामद हुआ है और उसकी पहचान की जा रही है। केरलम सरकार ने वायडनास भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीमें अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। केरल में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिले में येलो अलर्ट जारी है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, along with Indonesian

0: मुझे मिला, मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
1: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्य क्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वी के बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाज रोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that he considers it his good fortune to have had repeated opportunities to connect with Lord Shiva at various sacred sites. Addressing at the Prambanan Temple in Yogyakarta, Indonesia, the Prime Minister said he was born in Vadnagar, home to Hatkeshwar Mahadev, and that the Somnath Jyotirling in Gujarat, the first among the 12 Jyotirlings, holds special significance with him, having direct responsibility for its development. Mr. Modi also noted that his parliamentary constituency, that is Kashi, Varanasi, is home to Kashi Vishwanath Mahadev, whose blessings, he said, have always guided him. Referring to the redevelopment of the Kedarnath Temple and the Mahakaleshwar Temple in Ujjain, the Prime Minister said he had the privilege of contributing to these projects. He added that his visit to the Prambanan Temple had also given him the opportunity to

0: आकाशवाणी FM गोल्ड खांटी सोना।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वॉटर

0: Iran has launched retaliatory strikes on U.S. military installations following the U.S. attacks on its Hormozgan province and the port city of Mashhad. According to Iranian media, the Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC Navy and Aerospace Forces carried out a joint missile and drone operation targeting 85 U.S. military facilities. The reported targets included Salman Port, the U.S. 5th Fleet headquarters in Bahrain, and the Al El Salem Air Base in Kuwait. Iranian media also quoted an IRGC spokesperson as saying that the country's air defense systems had shot down a U.S. MQ-9 drone over Bushehr province. Earlier, the U.S. carried out a fresh round of airstrikes on Iran, targeting more than 80 locations in response to Iran's latest attacks on commercial ships passing through the Strait of Hormuz. Global crude oil prices rose more than 2% today as renewed hostilities between the United States and Iran threatened to shatter the fragile ceasefire that had brought some relief to global energy markets. Brent crude was trading nearly 2.3% up at $75.87 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 2.2% up at $71.96 per barrel when reports last came in. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.8% down in the afternoon session today amid renewed geopolitical tensions in the West Asia. The Sensex plunged 590 points to 77,591, while the Nifty shed 185 points to 24,213 when reports last came in. And in football, Switzerland beat Colombia 4-3 in a penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. With this win, Argentina will play against Switzerland in the quarterfinals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi visits UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, says India's participation in temple's conservation reflects shared cultural legacy of the two countries. Prime Minister Modi concludes his Indonesia visit, leaves for Australia to participate in third India-Australia annual summit. Two-day BRICS Women Ministerial Meeting begins in Kochi to strengthen cooperation on women's empowerment and sustainable development. Union Home Minister Amit Shah speaks to chief ministers of flood-affected states and assures all possible assistance from the centre. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms over central and eastern parts of the country. Iran targets American military sites in Bahrain and Kuwait after a wave of US strikes. Global oil prices jump over 2%. And Switzerland beat Colombia 4-3 in penalty shootout to set up quarterfinals against Argentina in FIFA World Cup. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों के महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रामबानंद मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
2: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजीशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह मंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के

0: हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री गरीब आबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी FM गोल्ड खांटी सोना।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।

0: কানে কথায় গোল্ডেন সময়, আপনি শুনছেন 100.1 FM Gold, 100.1 FM Gold, FM Gold.
1: আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে ফরহত নাজ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रांबनन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबनन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। इससे पहले महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर तथा सचिव अनिल मलिक ने पूर्ण सत्र में भाग लिया। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन भी आज शाम सम्मेलन में शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से

0: प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा की। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीटी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की और राहत तथा पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इस बीच मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार भारी बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज के साथ बादल बरसने, तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। प्रभास मंडल को एक नाबालिग लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, along with Indonesian President Prabowo Subianto. The Prime Minister was accorded a traditional welcome with the resonant notes of a gamelan ensemble and a classical Yogyakarta dance performance, reflecting Indonesia's rich cultural heritage. The two leaders toured the 9th century temple complex, where Prime Minister Modi offered prayers at the main Shiva temple. In a joint statement, President Prabowo said, Prambanan stands as a symbol of the centuries-old civilizational bond between India and Indonesia. He thanked India for its support towards the conservation and restoration of the temple complex and said culture continues to serve as a bridge connecting the two nations. Addressing the Prambanan temple, Prime Minister Modi described the visit as a deeply spiritual and memorable experience.
2: यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं, ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: Earlier, India and Indonesia strongly condemned terrorism in all its forms and called for a decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with the international law. In the second leg of his three-nation tour, Prime Minister Modi will reach Melbourne today on a three-day visit, where he will participate in the third India-Australia Annual Summit with the Australian Prime Minister Anthony Albanese. Mr. Modi will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both the countries. The BRICS Women's Ministerial Meeting has commenced in Kochi. The joint statement will be adopted during the main session. Following this, the ministers representing the delegates at the meeting will visit an exhibition organized in connection with the BRICS Summit. Exhibitions highlighting India's achievements in women-led

0: बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांभनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रांभनन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति प्रोबोवो ने कहा कि प्रांभनन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और एक यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों के दौरे की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में शुरू हो गया। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज बारिश से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा की।

0: इस बीच केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की और राहत तथा पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के अगले 2-3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि संघर्ष समाप्त करने के लिए ईरान के साथ हुआ समझौता अब प्रभावी नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी ईरान से बातचीत करने की कोई इच्छा नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi today visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta along with the Indonesian President Prabowo Subianto. The Prime Minister was accorded a traditional welcome with the resonant notes of a gamelan ensemble and a classical Yogyakarta dance performance reflecting Indonesia's rich cultural heritage. The two leaders toured the 9th century temple complex where Prime Minister Modi offered prayers at the main Shiva Temple. In a joint statement, President Prabowo said that Prambanan stands as a symbol of the centuries-old civilizational bond between India and Indonesia. He thanked India for its support towards the conservation and restoration of the temple complex and said culture continues to serve as a bridge connecting the two nations. Addressing at the Prambanan Temple, Prime Minister Modi described the visit as a deeply spiritual and memorable experience.
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: Earlier, India and Indonesia strongly condemned terrorism in all its forms and called for a decisive, coordinated and international efforts to combat the threat in accordance with the international law. In the second leg of his three-nation tour, Prime Minister Modi will reach Melbourne today on a three-day visit where he will participate in the third India-Australia annual summit with the Australian Prime Minister Anthony Albanese. Mr. Modi will also participate in the India-Australia CEO's forum where he will address a gathering of top business leaders from both the countries. Union Home Minister Amit Shah today spoke to the chief ministers of several states affected by heavy rainfall, flood-like situation and landslides and assured them of all the possible assistance from the centre. Mr. Shah spoke to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel and Kerala Chief Minister V.D. Satheeshan. Mr. Satheeshan said that Mr. Shah inquired about the Wayanad disaster and assured the centre's full support for relief and rehabilitation efforts. The National Commission for Women has taken serious cognizance of the reported gang rape and trafficking of

0: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। Join Indian Navy।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rainwater harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रमाणन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीनों देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। इस बीच श्री नायडू ने बताया कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। 450 मीटर लंबे इस अंडरपास के ऊपर विमानों के संचालन के दौरान नीचे सड़क यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री VD सतीशन से बातचीत की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र, गुजरात और केरलम के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया है कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से अधिक लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: 100.1 FM Gold Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: प्यारे श्रोताओं, परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम की। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना एक डिजिटल पोर्टल प्रदान करती है जहां योग्य और पात्र छात्र बिना जमानत और गारंटर के अपने कोर्स और संबंधित खर्चों के पूर्ण शिक्षा ऋण का लाभ उठा सकते हैं। इसमें सरल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, वार्षिक 8 लाख तक की आय वाले परिवारों के लिए 3% ब्याज सबवेंशन और 7.5 लाख यानी 7.5 लाख तक के ऋणों पर 75% क्रेडिट गारंटी शामिल है। बैंक नियमों के अधीन 7.5 लाख से अधिक का ऋण भी बिना जमानत उपलब्ध है। तो इस स्कीम के लाभ क्या हैं? बिना जमानत और गारंटर के ऋण मिलता है। शिक्षण शुल्क जिसमें साथ में हॉस्टल, मेस, लैपटॉप और जीवन यापन व्यय सहित सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। 7.5 लाख तक के ऋणों पर 75% सरकारी क्रेडिट गारंटी मिलती है। इसके अलावा 8 लाख तक वार्षिक आय वाली परिवारों के लिए मोहलत अवधि यानी कोर्स अवधि अगर 1 वर्ष से ज्यादा है तो इसमें 3% ब्याज सबवेंशन मिलता है। तकनीकी या फिर प्रोफेशनल कोर्स में 4.5 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए PMUSP CSIS के तहत पूर्ण ब्याज सबवेंशन मिलता है। मोहलत अवधि को छोड़कर 15 वर्षों तक आप पुनर्भुगतान कर सकते हैं और ई वाउचर, CBDC वॉलेट के माध्यम से भी ब्याज सबवेंशन हो सकता है। तो इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? 18 से 23 वर्ष के भारतीय नागरिक होने चाहिए जो इस स्कीम से लाभ उठाना चाहेंगे, यानी जो छात्र हैं वो 18 से 23 वर्ष

0: के बीच की आयु के होने चाहिए, 860 नामित QHEIs यानी क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मेरिट के आधार पर आपको प्रवेश मिलना चाहिए। तकनीकी या किसी प्रोफेशनल कोर्स में आपका नामांकन होना चाहिए। सरकारी स्कूल से 10वीं और 12वीं अगर आपने उत्तीर्ण की है तो अब आप पात्र हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए। इसके अलावा 3% सबवेंशन के लिए वार्षिक आय 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए। किसी अन्य केंद्र या फिर राज्य छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप या सबवेंशन योजना का अगर आप लाभ उठा रहे हैं तो फिर इस योजना के पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम की आप फायदे नहीं ले सकते, आप इसका लाभ नहीं उठा सकते। कोई शैक्षणिक या अनुशासनात्मक कारणों से नामांकन विच्छेद या निष्कासन नहीं, और द्वितीय वर्ष से संतोषजनक शैक्षणिक प्रदर्शन छात्र को करना होगा। बस यही कुछ बातें हैं जो आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र बनाती हैं। तो आज हमने परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत जाना पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में।
1: 100.1 एफएम गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की। परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति।
0: चाय और क्लासिक्स जारी है, चैनिका है आपके साथ और फिलहाल घड़ी में समय 5:25:27। कल भी मैं आई थी, आज फिर आई हूँ लेकर आपके साथ चंद बातें। ये जो हमारी छोटी छोटी मुलाकातें होती हैं इसकी जो खास बात है वो है हमारी बातें और साथ ही हिंदी फिल्म संगीत। पुराने हिंदी फिल्मी गीत यानी क्लासिक्स जिन्हें हम कहते हैं वैसे गाने इस कार्यक्रम की शान है और मैं जानती हूँ कि इन्हीं के आकर्षण की वजह से आप हम तक खींचे चले आते हैं। तो आपने ट्यून इन किया है आपका रेडियो सेट 100.1 एफएम गोल्ड कोलकाता पर। पहला गीत कार्यक्रम का झुमरू फिल्म से मैंने आपको सुनवाया, किशोर कुमार की आवाज थी। और अब छुटपुट बातें हो जाए फिर हम गानों की तरफ दोबारा रुख करेंगे। आपको बताना चाहूंगी कि आज के दिन की क्या खासियत है। हर एक दिन अपने आप में खास होता है और इतिहास के आईने में अगर हम झांक कर देखें तो पता चलता है कि कोई एक पर्टिकुलर डे अपने अंदर क्या कुछ समाया हुआ है। तो आज का अगर ये दिन है, 8 तारीख है, आज 8 जुलाई है, इसको मैं कह सकती हूँ कि ये खोजी किस्म का दिन है। इसमें बहुत मतलब पोटेंशियल है इस दिन में अलग अलग तरीके की चीज़ों को ढूंढ निकालने की। अगर मैं ऐसा कहूँ तो आप लिंक कुछ इसका पता करना चाह रहे हैं या फिर आपको पता है, नहीं अगर पता है तो मैं आपको हेल्प करती हूँ। क्यों है ये खोजी किस्म का दिन? क्योंकि आज ही के दिन 1497 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अपने जहाज से रवाना हुए। वो चले सेल करते करते करते करते वो भारत पहुंचे। भारत की यात्रा समुद्र से पार करने वाले वो पहले यूरोपीय बने। जी हाँ, आज ही की तारीख यानी 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल के लिस्बन शहर से अपने 4 जहाजों के बेड़े के साथ वो रवाना हुए थे और अफ्रीका के समुद्री तटों से होते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड पहुंचे थे। और ये यूरोप से भारत तक की पहली सीधी समुद्री यात्रा थी। इस खोज ने यूरोप और एशिया के बीच सीधा व्यापार मार्ग खोला, जिससे पुर्तगालियों का सालों के व्यापार पर एक छत्र हो गया समझ लीजिए। अच्छा, 8 जुलाई क्या केवल इसी वजह से खोजी दिन बन गया या कुछ और भी ढूंढा गया था? अगर आप जानना चाहते हैं बने रहिए मेरे साथ, एक सुरीला सा ब्रेक लेते हैं फिर मैं बताती हूँ कि क्यों मैं इस दिन को खोजी किस्म का दिन कह रही हूँ। आप सबके लिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में ये खूबसूरत सा युगल गाना।

कोई और क्यों, मैं खुद आपको बताऊंगी कि आज के दिन में और क्या खास है। खोजी दिन है ये। क्यों खोजी दिन है? क्योंकि आज ही के दिन 1836 में महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन शोध करने सेंट हेलेना पहुंचे। 8 जुलाई 1836 को अपने प्रसिद्ध जहाज HMS बीगल पर शोध करते हुए सेंट हेलेना द्वीप पहुंचे थे चार्ल्स डार्विन। और इस दूर दराज के ज्वालामुखी द्वीप पर 14 जुलाई 1836 तक वो रुके थे। और शोध में मदद के लिए उन्होंने एक स्थानीय बुजुर्ग व्यक्ति को अपना गाइड बनाया था और स्थानीय भूविज्ञानी रॉबर्ट सील की भी उन्होंने मदद ली। और यहाँ रहते हुए उन्होंने कई पौधों और जीवों का निरीक्षण किया। और डार्विन के इन ऑब्जर्वेशंस ने ही बाद में उनके द फेमस विकासवाद के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की नींव रखने में मदद की। तो है ना ये 8 जुलाई का दिन खोजी किस्म का। और भी कुछ एक खास बातें जुड़ी हैं आज के इस दिन से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया में कदम रखा था। जानना चाहते हैं आप उनके बारे में? जुड़े रहिए ना मेरे साथ थोड़ी देर, और ठहरना है अभी मेरे साथ। शाम 6 बजे तक तो रहेंगे ही, फिर न्यूज ब्रेक पर जाएंगे और दोबारा लौटेंगे। लेकिन अभी फिलहाल 5:34 और 25 सेकेंड्स, इसलिए हम हैं अभी साथ साथ। आप लोग जुड़े रहें मेरे साथ ओनली ऑन 100.1 FM Gold कोलकाता, क्योंकि यहाँ पर न केवल छुटपुट बातें हैं बल्कि क्लासिक्स का साथ है। आप सबके लिए एक और खूबसूरत संगीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: क्लासिक्स का मजा चाय की चुस्कियों के साथ ले रहे हैं आप। चैनिका है आपके साथ, शायद अभी तक हाथ में आपके चाय का प्याला आया नहीं है, रास्ते में है, पहुंच रहे हैं, लेकिन जो है अपने घर में या फिर कहीं

अपने ऑफिस में भी हो सकता है कि आप हमें आपके साथ जुड़े हुए अपने काम में बिजी हैं, लेकिन चाय और कॉफ़ी का प्याला अब ऐसी चीज़ हो गई है जो आपको कहीं भी कंपनी दे सकती है, और हम भी वैसे ही हैं, आपको कहीं भी किसी भी जगह कंपनी देते हैं। तो चयनिका के साथ अभी फिलहाल इस खूबसूरत से कार्यक्रम में आप जुड़े हैं एफएम गोल्ड कोलकाता पर, और स्टूडियो की घड़ी मुझे बता रही है कि 5:40 होने में केवल 1 मिनट रह गया है। और आपको जैसे मैंने कहा कि आज का ये जो दिन है, इस खास दिन पर बहुत सारे खास व्यक्तित्व जन्मे थे, बताऊं मैं आपको एक एक करके उनके बारे में, तो सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी ज्योति बासु का। 1914 में आपका जन्म हुआ, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता थे आप। 1977 से 2000 तक लगभग 23 वर्षों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में आपने कार्य किया, जो भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल है। भारत की संसदीय राजनीति में आपको एक मजबूत और अनुशासित नेता के रूप में याद किया जाता है, और जो कार्यकाल रहा आपका वो भूमि सुधारों के लिए प्रसिद्ध रहा। हमारी तरफ से आपको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इसके अलावा एक और सपूत हैं बंगाल के जिनका आज जन्मदिन है। भारतीय क्रिकेट में जब भी सबसे प्रभावशाली कप्तानों का नाम लिया जाएगा तो सौरव गांगुली का नाम सबसे पहले आएगा। 8 जुलाई 1972 को हमारे कोलकाता शहर में आपका जन्म हुआ था। भारतीय क्रिकेट को कई ऐसे नगीने दिए आपने जिन्होंने लंबे समय तक देश को गौरवान्वित किया। सौरव गांगुली को आई फॉर टैलेंट कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग को आपने ओपनर बनाया, महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 3 पर भेजा, और दादा खिलाड़ियों की किस्मत बदल देते थे, हम सब जानते हैं। धोनी और सहवाग के अलावा हरभजन सिंह, युवराज सिंह और जहीर खान जैसे प्लेयर्स को आपने तराशा। आपको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा बर्थडे है आज हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अदाकारा दिग्गज अभिनेत्री नीतू सिंह का भी। 8 जुलाई को माने आज ही के दिन 1958 को नई दिल्ली के एक पंजाबी सिख परिवार में आपका जन्म हुआ था, और बाल कलाकार के रूप में आपने अपने करियर की शुरुआत की, और उसके बाद मेनस्ट्रीम जो फिल्में थीं आपने भरपूर फिल्में की, दीवार, अमर अकबर एंथनी, कभी कभी, काला पत्थर और खेल खेल में जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में आपने काम किया। उसके बाद लिया था एक ब्रेक अपने घर परिवार को समय देने के लिए, फिर आप लौटी दोबारा। और कहते ना कि किसी किसी की ऐसी स्क्रीन प्रेजेंस होती है कि आप उनको स्क्रीन पर देखते ही आपका जो है दिल खुश हो जाए, इतनी एनर्जी, इतनी पॉजिटिविटी। तो नीतू सिंह या नीतू कपूर जो भी आप कहें, उनके अंदर वही पसौना हमने बार बार देखा है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। और एक बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री रेवती का भी आज जन्मदिन है। अभिनेत्री, निर्देशक और सोशल वर्कर हैं। 1980 के दशक में अपने अभिनय करियर की आपने शुरुआत की थी, और 3 अलग अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई फिल्मफेयर पुरस्कार आपको मिल चुके हैं। हैप्पी बर्थडे आपको भी रेवती। तो चलिए अब एक और खूबसूरत सा गीत आपके लिए मैं हाजिर कर दूं। बातचीत ऐसे ही चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन क्लासिक्स का जो सिलसिला है वो रुकना नहीं चाहिए। तो मौसम का तकाजा जो है वो कह रहा है कि बारिश हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन बारिश कुछ जगहों पर तो ऐसी धुआंधार मूसलाधार हो रही है कि वहाँ के लोग जो हैं वो एकदम से डरे घबराए हुए हैं। लेकिन हम भी ऐसी फुहारों का मज़ा, तो मतलब जो हल्की फुल्की फुहारें हों जिनसे कहीं पर पानी ना जमे, आने जाने में परेशानी ना हो, उसका लुत्फ हम उठा ही लेते हैं। तो कुछ दिन पहले कलकत्ता भी ऐसी मतलब बहने लगा था, सड़कें बह रही थी, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ नज़ारा है नहीं। तो बस वो एंजॉयमेंट वाली फीलिंग आपके दिल में आ जाए, इसलिए रिमझिम के प्यारे प्यारे गीत। शैलेंद्र ने लिखा था, सलील चौधरी का संगीत, आपको एक गाना सुनवाती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि बैक टू बैक दो गाने हमने सुने, फिल्म का नाम अनाड़ी और उसके बाद असली नकली। लता मंगेशकर, मुकेश की आवाज़ में अनाड़ी का जो युगल गीत सुना दिल की नज़र से, और असली नकली का लता मंगेशकर की आवाज़ में जो हमने गीत सुना तेरा मेरा प्यार अमर, दोनों ही गीतों को लिखा था
शैलेंद्र ने और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। और पहला गीत वो तो किशोर कुमार की फिल्म झुमरू से था, किशोर कुमार का ही संगीत और उन्हीं ने वो गाना लिखा था। चलिए फिलहाल अभी सुनते हैं उसने कहा था फिल्म का ये वाला प्यारा वाला गाना।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: ये जो जमाना है जिसमें हम रहते हैं, ये डिजिटल जमाना है, यानी हर चीज जो है वो आप टाइप करके लिखते हैं। किसी को संदेश अगर भेजना है कोई, तो वो आप टेलीग्राम करेंगे या फिर आप टेक्स्ट करेंगे या आप व्हाट्सएप करेंगे, लेकिन हाथों से लिखकर कहाँ हम भेजते हैं आजकल वो प्यार भरी पाती जिसे हम पहले अंतर्देशीय या पोस्टकार्ड के माध्यम से भेजा करते थे, वो दिन लद गए। लेकिन फिर भी लिखने पढ़ने का शौक बहुत सारे लोगों को होता है, और ऐसे ही लोगों के लिए एक बड़ी ही मज़े की मैं बात आज लेकर आई हूँ, साझा करना चाहती हूँ आपके साथ, जो पसंद करते हैं आज के जमाने में भी पढ़ना लिखना। अच्छा, आप जानते हैं कि घर में ही आप बोटानिकल इंक बना सकते हैं। अब ये जो इंक है, यानी प्राकृतिक चीजों से, प्राकृतिक स्याही हम कह सकते हैं बोटानिकल इंक को, जो प्राकृतिक चीजों से बनाई जा सकती है। तरीका क्या होगा अगर आप ऐसा कुछ घर में करना चाहते हैं नया कुछ, तो पौधों, फूलों या फलों से प्राकृतिक या बोटानिकल स्याही बनाने के लिए पौधे के हिस्सों को थोड़े से पानी और सिरके के साथ धीमी आंच पर 1 घंटे तक उबालें। अच्छा, यहाँ जो पानी का जो वो रेशियो है ना, वो जितने आप मतलब जो चीज़ें हैं जिन्हें आप उबाल रहे हैं उनका डबल रेशियो होना चाहिए पानी का, और सिरके के साथ उसको धीमी आंच पर 1 घंटे तक उबालें, फिर छान कर इसको आप गाढ़ा करें, और फिर रंग को कागज़ पर चिपकाने के लिए गम अरेबिक और फफूंद रोकने के लिए लौंग का तेल इसमें मिलाएं, इंक को ठंडा होने दें, फिर 1 जार में भरकर आप स्टोर कर लें और ब्रश का यूज़ करें इसको इस्तेमाल करने के लिए। वो होती ना वो पहले की तरह वो इंक पॉट्स में आप डुबोते उसके बाद लिखते, तो उस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कैलीग्राफी के लिए भी इस्तेमाल इसका किया जा सकता है, और अगर आप एकदम प्रॉपर वे में पेन से लिखना चाहते हैं, यानी ये जो स्याही है बोटानिकल इंक है इसको आप पेन में रिफिल करना चाहते हैं, तो उसका भी एक तरीका है। उसका भी एक तरीका किसी और दिन मैं विस्तार से आपको बताऊंगी कि यही जो इंक आपने बनाई है अपने घर में उसको और थोड़ा सा कैसे मॉडिफाई करके आप अपनी इंक पेन में उसको भर सकते हैं, फिर उससे पेन के माध्यम से लिख सकते हैं, तो है ना मज़ेदार चीज़। अच्छा, कौन कौन से रंग आप बना सकते हैं, किस किस चीज़ से, कभी आपने सोचा है ये प्राकृतिक जो इंक है इसको बनाने के लिए अगर आप रेड एंड पिंक कलर बनाना चाहते हैं, तो चुकंदर, अनार के छिलके या जो हिबिस्कस होती है ना गुड़हल, उसके फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीला और नारंगी रंग अगर आपको बनाना है, पीले और नारंगी रंग के स्याही के लिए हल्दी, गेंदे के फूल और प्याज के सूखे छिलके, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नीला और बैंगनी कलर अगर आपको चाहिए, तो जामुन, काली मिर्च या अपराजिता के जो फूल होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हरा रंग बनाने के लिए पालक के पत्ते, पुदीना या हरी घास, और भूरा और काला रंग अगर आपको चाहिए आपकी इंक का, तो कॉफ़ी पाउडर, काली चाय या फिर अखरोट के छिलकों का इस्तेमाल हो सकता है। और वो एकदम सेम वाला तरीका, यानी आप जैसे मैंने बताया किस तरह से पानी में डाल के सिरके के साथ उबालना है, 1 घंटे तक उबालना है, फिर छान कर गाढ़ा करना है, और उसमें गम अरेबिक और लौंग का तेल मिलाना है, ठंडा करना है, 1 जार में भर के स्टोर करना है, फिर इस्तेमाल करना है। और हाँ, पेन के अंदर कैसे इस इंक को भरेंगे उसके बारे में नेक्स्ट डे जब मैं मिलूंगी मैं बताऊंगी जरूर आपको। तो बोटानिकल इंक आपने घर में बना ली कितने मजे से, और उस जार में डाल के स्टोर करने के बाद ब्रश से कैलीग्राफी कीजिए, बस डुबोइए पहले की तरह, जिस तरह से दवात में कलम डुबोकर लिखा जाता था वैसे तो आप कर ही सकते हैं, है ना मजे की चीज। और इस तरह मजे मजे में समय जो है ये पंख लगाकर आगे उड़ चला, और इसके जो पंख हैं

54 मिनट और 11 सेकंड्स फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में एकदम सही समय है। तो आपको एक तड़कता फड़कता सा गाना सुनवाया जाए, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे एक छोटे से न्यूज ब्रेक की ओर। तो चलिए हम सुनते हैं ज्वेल थी फिल्म से आशा भोसले की आवाज में ये वाला गाना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रोबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है। इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर अब 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा कर दी जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश भर के

0: But indirect talks in Qatar ended with no sign of headway, and the U.S. military unleashed a new wave of strikes against Iran yesterday. Benchmark domestic equity indices plunged more than 2% today as renewed geopolitical tensions weighed heavily on the markets. The Sensex tumbled 1,677 points to close at 76,504. The Nifty also dipped 517 points to settle at 23,882. The 8th Khelo India Youth Games 2026 will be hosted by Telangana. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia made the announcement today. The quarterfinal lineup for the FIFA World Cup has been finalized. France, Morocco, Norway, England, Spain, Belgium, Argentina, and Switzerland have booked their places in the last 8. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण
2: आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आज के कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा और दोनों देशों के बीच हुए प्रमुख समझौतों का विश्लेषण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर हुई इस राजकीय यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापक द्विपक्षीय वार्ता हुई। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि भारत और इंडोनेशिया के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के प्रमुख परिणाम क्या रहे और क्यों इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन तथा इंडो पैसिफिक रीजन में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी हुए और भविष्य के सहयोग के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गयी। आइए सुनते हैं ये विस्तृत रिपोर्ट।
3: रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने सहयोग को नई मजबूती दी है। समुद्री सुरक्षा से जुड़े समझौते को आगे बढ़ाने के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली और वायु से वायु मिसाइल सहयोग पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सूचनाओं के बेहतर आदान प्रदान के लिए गुरुग्राम स्थित सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र यानी IFC IOR में इंडोनेशिया के एक संपर्क अधिकारी की तैनाती की घोषणा की गयी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक सहयोग को भी इस यात्रा के दौरान नई गति मिली। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष के उपयोग से जुड़े ढांचागत समझौते का विस्तार किया गया। दूरसंचार प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, नवाचार तथा महत्वपूर्ण खनिज और इस्पात आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में भी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडोनेशिया की क्राकाटाओ स्टील के बीच इंडोनेशिया में स्टेनलेस स्टील स्लैब निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए रणनीतिक संयुक्त उद्यम पर सहमति बनी। वहीं रेयर अर्थ मैग्नेट के विकास से जुड़े समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। भारत इंडोनेशिया को उच्च गुणवत्ता वाले DWR 162 गेहूं के 100 टन बीज उपलब्ध कराएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में चिकित्सा उत्पादों के विनियमन और स्वास्थ्य कार्यबल के सहयोग से जुड़े समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। वहीं भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के बीच भी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने शिक्षा, संस्कृति और डिजिटल सहयोग को भी नई प्राथमिकता दी। ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत सहयोग करेगा। 2027 में रविंद्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा के 100 वर्ष पूरे होने पर टैगोर देवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक कूटनीति वर्ष मनाने की घोषणा की गई।
2: श्रोताओं, इन समझौतों और घोषणाओं से स्पष्ट है कि भारत और इंडोनेशिया की साझेदारी रक्षा और समुद्री सुरक्षा से लेकर प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और डिजिटल अर्थव्यवस्था तक भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आगे बढ़ रही है। इन्हीं विषयों पर आकाशवाणी ने पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
4: करीब 12 से अधिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए और जो सुरक्षा के क्षेत्र में है, विकास के क्षेत्र में है, तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में और शिक्षा, और इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे मुख्य

0: सुरक्षा के क्षेत्र में है। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल्स ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही अच्छा कार्य किया, दुनिया ने उसको देखा, और भारत डायनेमिक्स का जो अस्त्र मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल, उसने भी ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही अच्छा काम किया, और इन दोनों का इंडोनेशिया के साथ एग्रीमेंट हुए हैं उनको सप्लाई करने के। उसके अलावा सबांग पोर्ट है एक, जो हमारे अंडमान निकोबार से केवल 100 मील दूर है, उनके बीच में भी सहयोग की बात की जा रही है।
1: भारत की एक्ट ईस्ट नीति में इंडोनेशिया का विशेष स्थान है। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश होने के साथ साथ इंडोनेशिया आसियान का भी बड़ा सदस्य है। ऐसे में भारत और आसियान के बीच आर्थिक, रणनीतिक और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने में इंडोनेशिया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं और व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दायरा भी लगातार बढ़ा है। आइए विस्तार से समझते हैं।
2: भारत और इंडोनेशिया केवल पड़ोसी समुद्र देश ही नहीं है, बल्कि दोनों हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदार भी हैं। दोनों देशों के बीच लगभग 1200 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। भारत और इंडोनेशिया का सहयोग केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा और निर्बाध व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी सोच के अनुरूप भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए सागर दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। अब इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए महासागर दृष्टिकोण के माध्यम से भारत समुद्री सुरक्षा, संपर्क, आपदा प्रबंधन, क्षमता निर्माण, ब्लू इकोनॉमी और सतत विकास के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। सबांग बंदरगाह के विकास, समुद्री संपर्क और तटरक्षक बलों के बीच बढ़ते सहयोग को इसी व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा माना जाता है। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से आगे बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था। इसी यात्रा के दौरान सबांग बंदरगाह के विकास और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए दोनों देशों ने संयुक्त कार्यबल बनाने का निर्णय लिया। सबांग बंदरगाह मलक्का जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार के निकट स्थित है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में सबांग बंदरगाह का विकास केवल भारत और इंडोनेशिया के बीच संपर्क बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। रक्षा और समुद्री सहयोग भी दोनों देशों की साझेदारी का एक मजबूत आधार है। भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग का औपचारिक समझौता 2 दशक से अधिक समय से लागू है। दोनों देशों के बीच समन्वित समुद्री गश्त, नौसैनिक और थल सेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास, तटरक्षक बलों के बीच सहयोग, सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग से जुड़े कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।
1: भारत और इंडोनेशिया के संबंध अब केवल द्विपक्षीय सहयोग तक सीमित नहीं है। लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की जाए या फिर साझा समुद्री हितों की, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने की समान सोच ने दोनों देशों को क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण साझेदार बना दिया है, और यही कारण है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति और महासागर दृष्टि में इंडोनेशिया की भूमिका आने वाले वर्षों में और अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आकाशवाणी से भारत इंडोनेशिया संबंधों पर विशेष बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा ने भी इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र का, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के मामले में भी, अपनी आर्थिक शक्ति के मामले में भी, और उसकी जो सामरिक महत्व है उसका दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए इंडोनेशिया केंद्रीय स्थान रखता है भारत की एक्ट ईस्ट नीति में। इंडोनेशिया की जहां तक आर्थिक रूप से महत्ता है, वो ये है कि 25 बिलियन का व्यापार दोनों देशों के बीच में है, जिसे इनफॉर्मल अगर हम ट्रेड जोड़े तो वो उससे भी ज्यादा होता है। दोनों ही देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के जो नीति है उसमें समानताएं बहुत सारी हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के इंडोनेशिया भारत से सीखना चाहता है। भारत की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी में इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होकर के अपना योगदान देना चाहता है। इसके पहले हमने देखा कि इंडोनेशिया और भारत दोनों ही देशों ने G20 की अध्यक्षता की, और किस तरह उन्होंने तमाम जो देश हैं जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के ग्लोबल साउथ के विकासशील जो देश हैं, वो कैसे अपनी विदेश नीति और सामरिक नीति को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: श्रोताओं, अपनी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को भी संबोधित किया। वे इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो

उन्हें इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण प्रदान किया। दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए इस चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया की यात्रा पूरी कर तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण के लिए अब ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए हैं। वहां वे प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग अलका सिंह।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
2: चाय और क्लासिक्स के दूसरे भाग के साथ चयनिका हाजिर है। और सबसे पहले एक बेहद जरूरी सूचना आपको मैं बताना चाहूंगी कि आने वाले 2-3 घंटों के बीच पश्चिम मेदिनीपुर जिले के कुछ एक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, साथ में गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। हवाओं की जो तीव्रता है या गति है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की आशंका है। और जिसके साथ मैंने कहा आंधी तूफान के साथ बारिश भी होगी, हल्की से मध्यम बारिश पश्चिम मेदिनीपुर के कुछ एक हिस्सों में। ऐसी हालात अभी फिलहाल बन रहे हैं। आने वाले 2-3 घंटों में आप सतर्क रहें, सावधान रहें। और देखते देखते अब मेरे जाने का समय हो चला है। 6:22:45 अभी फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में एकदम सही समय। और चलते चलते बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी में अलग अलग रोल निभाते हुए जब हम किसी कठिन समय से, किसी कठिन दौर से गुजरते हैं तो अक्सर पूछते हैं खुद से कि हमसे क्या गलती हो गई जो ऐसा हुआ। ये जो हम खुद को ब्लेम करते हैं ना, अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम ले लेते हैं, ये हमें अंदर से खोखला कर देता है और हमारे कॉन्फिडेंस की, हमारे आत्मविश्वास की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम खुद की तरफ दयालु रहें, एम्पथी हमारे दिल में हो सबके लिए, लेकिन सबसे पहले अपने लिए। सेल्फ कंपैशन पहले, फिर तो आप दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव उत्पन्न कर पाएंगे। बड़े बड़े ज्ञानी ऐसा कह गए कि अपने से अगर प्रेम ना होगा, अगर खुद की परवाह न होगी, तो दूसरों से भी प्रेम नहीं मिलेगा और ना ही आप दूसरों को वो दे पाएंगे। इसलिए लाइफ की जो सिचुएशन है वो है, ठीक है, उसके जिम्मेदार आप नहीं हैं। उसी में खुश रहना है, चीजों को मैनेज करना है, आगे बढ़ना है, जीतना है। जो सिचुएशन है उसमें आप तब्दीली जरूर ला सकते हैं, ये विश्वास।

आपके अंदर रहे और आप आगे बढ़ते रहें। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज चाय और क्लासिक से मैं विदा लेना चाहूंगी और चलते चलते आप सबके लिए खूबसूरत सा गीत। ये गीत वैसे कह रहा है कि ना जा कहीं अब ना जा, लेकिन क्या ही कहूँ, आज तो जाना ही पड़ेगा। फिर किसी और दिन जरूर आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा FM गोल्ड कोलकाता पर, 100.1 FM गोल्ड कोलकाता पर। हमारा ये जो साथ है बहुत खास है, सुनते रहें साथ रहें।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaurav Dhawanlal with my co-anchor, प्राची प्रिया।
1: नमस्कार, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। श्रोताओं, आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर नजर डालेंगे और चर्चा भी करेंगे। आज चर्चा के लिए हमारे समक्ष हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक संपादक ए के भट्टाचार्य। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
2: नमस्कार, थैंक यू।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
0: Thank you, Prachi. AKB, once again, welcome to the program. A quick look at the headlines first. Benchmark domestic indices shed over 2%. Sensex falls nearly 1,700 points. Nifty settles below 23,900. Asian stock market indices end on mixed note. And global crude oil prices surge.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में 2% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स लगभग 1700 अंक लुढ़का। निफ्टी 23,900 के नीचे बंद हुआ। एशियाई शेयर बाजार में मिलाजुला रुझान रहा और कच्चे तेल के वैश्विक मूल्यों में आया भारी उछाल।

0: Listeners, before we dive deeper into the program, we'd like to share with you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any final financial decision.
1: Aur shrotaon, aaiye ab jaan lete हैं कि आज दिन के अंतराल में शेयर बाजार की चाल में कितनी लचक रही। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में आज 2% से अधिक की गिरावट आई। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, कमजोर वैश्विक संकेतों और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण बाजार में मंदी देखी गई। सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 इंडेक्स 1.5% से अधिक लुढ़का, जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले सत्र के दूसरे भाग में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ये कहने के बाद कि ईरान के साथ टकराव खत्म करने के लिए किया गया समझौता समाप्त हो चुका है और वे तेहरान के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहते, बाजार में मंदी आई।
0: Benchmark domestic equity indices witnessed a sharp sell-off today, with both the Sensex and the Nifty plunging more than 2%. A spike in crude oil prices, weak global cues, and renewed geopolitical tensions weighed heavily on the markets. The Sensex tumbled 1,677 points to close at 76,504. The Nifty also dipped 517 points to settle at 23,882. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid Cap 100 index fell

0: over 1.5%, while the small cap 100 index lost more than 2.2%. Earlier, markets opened on a negative note amid geopolitical concerns. Sentiment weakened further during the latter half of the session after US President Donald Trump said that the memorandum of understanding signed with Iran to end the conflict was over, adding that he did not want to engage with Tehran.
1: सेंसेक्स में शामिल सभी 30 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में इंडिगो के शेयर 5%, मारुति के 4% से अधिक और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर लगभग 3.5% लुढ़के.
0: All 25 sectoral indices on the BSE ended in negative zone. Among the key laggards, services shed 3.2%, PSU banks as well as mid-small private banks, quality tilt, fell more than 2.7%, and FMCG lost over 2.5%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 3,211 declined, 1,070 companies advanced, and 173 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.14 पर कारोबार कर रहा था. भट्टाचार्य जी, आज हमने देखा बाजार में तकरीब 2% से अधिक का जो एक स्लिप आया है, ये क्यों आया है ये तो हम आपसे जानेंगे ही, लेकिन ये आगे आने वाले समय को स्टॉक मार्केट के लिए क्या क्या इंगित करता है?
2: देखिए, जो आज जो हुआ है, जैसे आपने भी और गौरव जी ने भी जो बताया हमें, उसमें ये साफ लगता है कि ये जो जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न्स जो हैं, चिंताएं जो हैं, वो जरा और भी गंभीर हो चुकी हैं, क्योंकि ट्रंप साहब के ऐलान से विश्व को ये लगता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो सीज़फायर की बहुत पहली एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक कड़ी थी, वो जरा थोड़ी बहुत वीक हो गई है, और मार्केट के सभी जो सिग्नल्स हैं वो अब नेगेटिव में जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को डर ये है कि शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो थोड़ी बहुत जो जो साधारण अवस्था जो आ गई थी वो फिर वही पुरानी स्थिति में पहुंच जा सकती है, जो तेल के मार्केट लिए ठीक नहीं है. और जो देश पर्टिकुलरली जो एशिया में जो देश हैं जो तेल के आयात के ऊपर काफ़ी निर्भरशील हैं, उनके लिए ये खबर ठीक नहीं है. उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उनकी जो उपलब्धि की जो एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें बाधा पहुंचेगी. तो हर तरह से देखें तो ये स्टॉक मार्केट ना कि ये शुरुआती तो विश्व की स्टॉक मार्केट से हुई थी, और पर इसका जो प्रभाव जो है वो भारतीय स्टॉक मार्केट में भी हुई है, रुपए में हुई है, क्योंकि रुपए में जो थोड़ी बहुत अप्रिशिएट कर रहा था पिछले कई दिनों में, वो आज लगा कि काफ़ी डिप्रिशिएट कर गया, क्योंकि भारत की जो अगर तेल का दाम अगर फिर से बढ़ना शुरू हो जाए तो हमारी जो जो डॉलर की डिमांड होगी वो सप्लाई से थोड़ा बढ़ जाएगी. तो उसी सब चीज़ को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये वेस्ट एशिया का जो जो वातावरण जो है उसके ऊपर स्टॉक मार्केट की जो गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा निर्भरशील है. उसी लिए जो जो डोमेस्टिक मार्केट की जो स्ट्रेंथ और जो वीकनेस जो है वो आज की तारीख में इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट निर्भरशील हो चुकी है. तब भी अगर आप ये देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में अगर आप अगर झुक के देखें, अगर अंदर जाकर देखें, तो आपको ये लगेगा कि जो सबसे ज़्यादा जो जो समस्याएं जो आ रही हैं वो जो तेल के दामों के ऊपर ज़्यादा सेंसिटिव हैं, निर्भरशील हैं, उनकी ज़्यादा, जैसे कि इंडिगो
1: जी.
2: जैसे आपने कहा इंडिगो की शेयर मार्केट काफ़ी नीचे आ गया, क्योंकि वो तेल इस्तेमाल करती है, ETF का दाम अचानक बढ़ जाएंगी तो उसकी सारी जो प्रॉफिटेबिलिटी में ख़त्म आएगी. उसी तरह जो मिड कैप स्टॉक्स जो हैं जो पिछले एक हफ्ते में बहुत अच्छी रिकवरी उनकी हुई है, आज उनकी पिटाई हुई है. स्मॉल कैप में उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लार्ज कैप में हुई है, पर लार्ज कैप

तरफ एशियाई शेयर बाजार में आज मिला जुला रुख रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 5.3% से अधिक, जापान का निकेई 2% से अधिक और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.5% गिरा। वहीं हांगकांग का हैंगसेंग 3%, ताइवान का ताइएक्स लगभग 0.5% से अधिक और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5% बढ़ा। यूरोप के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट, यूरोप के प्रमुख शेयर सूचकांक भी गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आए।

0: आओ जो
1: आचार्य जी, हमने पिछले ही महीने देखा कि कॉस्पी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा था और अभी हम देख रहे हैं कि कॉस्पी में एकदम मेजर करेक्शन, 20-22% तक उसमें गिरावट देखने को मिली है। ये वैश्विक स्तर पर ये किस तरफ का इशारा है, ये क्या हमें दर्शाता है?
2: जो मैंने पहले जो कहा था
1: जी,
2: जो मार्केट्स तेल के आयात के ऊपर अधिक निर्भरशील हैं, उनके लिए ये दौर काफ़ी पेनफुल रहेगा। और यही आज का मार्केट जो कॉस्पी का जो मूवमेंट करीबन 5.5% का गिरावट दर्शाता है। कोरिया कहिए, जापान कहिए, इवन चाइना जो वेस्ट एशिया के तेल के ऊपर काफ़ी निर्भरशील है
1: जी।
2: उनके लिए जो वेस्ट एशिया में जो हुआ, जो ट्रंप साहब का जिस ऐलान जो हुआ, उससे मैं समझता हूँ कि इन देशों के लिए और भारत के लिए भी एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। हालांकि हमारे देश में हमने जो तेल को जो हमने मैनेजमेंट करने की जो हमारी पॉलिसी है, हम ज़्यादा क्विक रिएक्शन न देकर हमने ओवरऑल मैनेजमेंट का एक सिलसिला रखा है। और ईरान के साथ भी बात कर हमारी काफ़ी जहाजें वहाँ से आ गई हैं। पर इन देशों में जो इनका इम्पैक्ट रिटेल मार्केट में या प्राइस लेवल में हुआ है, अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो उनमें ज़्यादा हुआ है। और इसीलिए स्टॉक मार्केट को भी यही चीज़ दर्शा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो जो जो एक गार्डरेल कह सकते हैं हम आप, जो सरकार ने तेल कंपनियों को और जो उपभोक्ताओं को दिया है, वो उन मार्केट में ये अवेलेबल उपलब्ध नहीं है। इसीलिए उनके स्टॉक मार्केट में जो हलचल मस्ती है वो ज़्यादा मस्ती है और हमारे स्टॉक मार्केट में रिलेटिवली कम होती है, क्योंकि इम्पैक्ट थोड़ा सीमित रहता है।
0: So even for the US market, the Fed results, what the Fed is going to say is going to play an important role.
2: Oh yes, absolutely. I think you are absolutely right. It will have an impact. The job market is under stress, not just for the oil but also for the AI. You know what has really happened is that in this West Asian war debate and discussion, we have almost forgotten how the world economy is going to be or has been already been impacted by the advent of artificial intelligence. So therefore the AI is going to have a major impact, and the stock market is yet to fully absorb the impact of the advent of AI in various areas. So whether it is artificial intelligence or whether it is a super intelligence or is a general intelligence, so in every way we are yet to see the full impact of the changes in the global economic order.
0: Right, so global economic order, I think it's layered, geopolitics,
2: absolutely,
0: every country's domestic situation, yes, interdependence,
2: yeah,
0: it's really layered, and we can't see a directed because of this is happening. There
2: absolutely
0: are many factors.
2: Absolutely.
0: Right, we move on to our next story. Listeners, outstanding credit extended by non-banking financial companies, NBFCs, against gold jewelry surged nearly 70% on an annual basis in May this year, marking the fastest growth among all lending segments. Outstanding loans against gold jewelry stood at nearly 3.3 lakh crore rupees at the end of May, up from over 1.94 lakh crore rupees a year earlier. This is as per the

0: रेन की बहुत जरूरी
1: सख्त जरूरत है अभी।
0: सो ओवरऑल जो 43% का जो शॉर्टफॉल था वो कम हुआ है, 10% की घटी है, पर अभी भी गैप है और ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे देश में वो कैसा होता है, पर एल निनो से हमें समझ

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफ खातों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि नियामक प्रोत्साहनों के माध्यम से गिफ्ट सिटी एक वैश्विक विमान लीजिंग और वित्तीय पोषण केंद्र के रूप में उभर रही है। श्री नायडू ने कहा कि 2026 के बजट में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाइयों के लिए कर छूट की अवधि बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। यह मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन के हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए निजी कंपनी और उसकी संबंध इकाइयों में स्थानांतरित किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 27 मार्च की मूल्यांकन योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। यह योजना खाड़ी देशों के उन नियमित विद्यार्थियों के लिए थी जिनकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण रद्द हो गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार और CBSE से जवाब मांगा है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में आज शाम एक इमारत ढह गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार मलबे में 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमें भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय

0: सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
3: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 107

0: के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
1: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोत्सुक को ने जस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Santa assures all possible.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने

मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। श्री मोदी ने ये भी कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। भारत और रूस ने संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का

0: उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्ला ओमारी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने कृषि, सिंचाई, पशुपालन, कृषि अनुसंधान, शिक्षा, क्षमता निर्माण और कृषि व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। भारत और म्यांमार ने सीमा सुरक्षा और द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में संपन्न हुए दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, साइबर अपराध और अन्य संगठित अपराधों से मिलकर निपटने पर चर्चा की। बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व गृह सचिव गोविंद मोहन ने किया, जबकि म्यांमार के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के उप मंत्री मेजर जनरल मिंथू ने किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में निलिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्यूक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्यूक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi arrived in Melbourne, Australia yesterday on the second leg of his three-nation visit. He was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities Claire O'Neill upon his arrival. The Prime Minister said this visit will add vigour to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he looked forward to the talks with his Australian counterpart Anthony Albanese. The Prime Minister said that he will also have the opportunity to interact with the Indian diaspora, which is an important pillar of India-Australia partnership. During his visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia Annual Summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday called on Crown Prince Sheikh Sabah Al Khaled Al Sabah of Kuwait. In a social media post, the minister shared that he conveyed the greetings of Prime Minister Narendra Modi to the Crown Prince. Dr. Jaishankar appreciated the Crown Prince's commitment to take forward the bilateral cooperation of India and Kuwait. The External Affairs Minister also called on Prime Minister of Kuwait Sheikh Ahmed Abdullah Al Ahmed Al Sabah. Dr. Jaishankar thanked him for support to the Indian community's welfare and well-being. In a social media post, the External Affairs Minister welcomed the vision of Mr. Al-Sabah for stronger and mutually beneficial India-Kuwait cooperation. Dr. Jaishankar also met Defence Minister Abdullah Ali Abdullah Al-Saleem Al-Sabah. The External Affairs Minister spoke about defence industry cooperation and maritime security. India and Russia yesterday reaffirmed their commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora, including at the UN, BRICS, EAG and SCO. The Ministry of External Affairs said that the 14th meeting of the India-Russia Joint Working Group on Counter-Terrorism was held in New Delhi. Secretary West, Ministry of External Affairs, C.B. George and Deputy Foreign Minister of Russia, Dmitry Lubinsky, co-chaired the meeting. Both sides condemned terrorism in all its forms and manifestation, including cross-border terrorism, and called for concerted action against terrorists, terrorist groups, and their proxies and affiliates. The Defence Research and Development Organisation, DRDO, yesterday conducted a successful flight test of Pinaka Long